0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 व्यक्ति 2.7 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

तामा सदा शिव जी को पावन चरित्र को प्रमाण रुद्र संहिता श्री श्रीखंड को तेरह अध्याय लाई आज बड़ो दिव्य रूप में ब्रह्मा जी रे नारद जी को संवाद बाट प्रादुर्भाव करते हुए कथा को प्रमाण निगरे को पावन नाम अठाश हजार ईश्वर का प्रमाण सुत जी महाराज जी आगे करते गई सके प्रकरण में भगवान प्रभु परमात्मा शिवलिंग को पूजन को विधि हजूरले बताई सकनु भएको संपूर्ण देवताहरूलाई इंद्र कुबेर धर्मराज वरुण इंद्र संपूर्ण देवताहरूलाई आज हजूरले भगवान प्रभु परमात्मा सम्म सदा शिवजी को शिवलिंग बनाएर विष्णुले बाणी सकेको प्रकरण बारौं अध्यायमा गरिसक्नुभयो प्रभु अब उनी शिवलिंग को पूजा को स्तोत्र पाठ विधि विधान कस्ता किसिम का करने भोले बाबा कुन कुन स्तोत्र प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर आज्ञा गरिदिनुभयो लौ त प्रभु यसै प्रश्न को उत्तर में अब ब्रह्माजी नारद जी यही प्रकरण को